0: I do think the soundtrack of Om Shanti Om is exceptional. Such beautiful gems. Rahat Fateh Ali Khan, Richa Sharma, Jag Suna Suna Lage. Sunrise Radio पर इस घंटे का आपकी पसंद ऑफ द आवर.
1: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
2: Hello UK वालों, Big Boss is back और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं two chance. Big Boss only on Colors.
3: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 PM only on Colors TV and Jio Hotstar.
0: The hit of the hour with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India. After Rahat Sahab from Om Shanti Om, the late great Nusrat Fateh Ali Khan, but this time round, remixed by Rishi Rich.

0: taken from the hero love story of a spy. Alka Yagnik, Hariharan, Tum Bhi Na Mano on Sunrise.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
2: Hello UK, Walo, Big Boss is back. And this time, ghar walon ko milega ek nahi, two chance. Big Boss only on Colors.
3: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 PM only on Colors TV and Jio Hotstar.
0: सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट दिया टेकन फ्रॉम द फिल्म धुरंधर. आफ्टर टेलिंग यू अबाउट दिस सॉन्ग, फिर से गेटिंग अ ग्रैमी नॉमिनेशन नहीं कंसिडरेशन, वी हैड टू एंजॉय टुगेदर ऑन दिस शो, राइट? गुड मॉर्निंग.

0: tamarind or shine. Add a burst of flavour to every meal with crisp poppadoms, vibrant pickles and sweet mango chutney. Available at Asda and Tesco.
1: आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. इट्स अ वेंसडे, इट्स द 14th ऑफ अक्टूबर. जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी सक कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मेरा और आपका साथ 9 से 12 के बीच एवरी वीकडे, राइट बिफोर आवर लवली कविता टेक्स ओवर. बिगिनिंग द लास्ट एंड फाइनल आवर टुडे विद जीत गांगुली एंड हरनूर बैक टू बैक. शुक्रिया, कोई ना.
2: Back-to-back songs with Ambala Sweets. Imagine winning 6 kilos of Ambala's delicious mithai this Diwali. To celebrate, Ambala is giving 5 lucky customers 12 boxes of our famous mithai each. Simply spend £25 or more online at ambala.co.uk by 20th October for your chance to win. Perfect for sharing after the win. Celebrate Diwali with Ambala. Terms and conditions apply.

0: 1985 की फिल्म एतबार का ये गाना, भूपिंदर सिंह, आशा भोसले, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है ऑन सनराइज. गुड मॉर्निंग.
1: Listener's Choice, brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
4: The hit of the hour with Jamin Foods.
5: Navratri के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा with नमकीन, mango ball, chikki और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
0: Nirmal ji, you're absolutely right. Preetam and Pedro comes highly recommended. Maine abhi dekhi nahi hai, but people said that they've actually done a very good job. This, of course, was director Rajkumar Rao's Rajkumar Hirani. Rajkumar Hirani's foray into the OTT space, although he hasn't directed it. He's produced this and he launched his son as an actor in this project. And people are saying that they've done a really good job. It's set in Goa. But coming back to the other Rajkumar Rao, वमिका गब्बी के साथ उनकी फिल्म प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम, इज आउट इन सिनेमाज दिस फ्राइडे. हियर्स अ सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म. तुझ में बसी है मेरी जान, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए, उसमें भी ये लाइन है, तुझ में बसी है मेरी जान, राइट? एंजॉय दिस.

0: Now on Ticketmaster and AXS in association with Berico Food Distribution Limited and PRC Direct. Don't miss your chance to witness the voice that is Jubin Nautiyal, Radio Partner Sunrise Radio.
1: स्वागत है आप सभी का मेरे दर्शकों और चाहने वालों दिवाली के अवसर पे खेलो और जीतो गेम में. पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. धनतेरस में हर घर में क्या खरीदा जाता है?
2: गोल्ड.
1: और ये बिल्कुल सही जवाब लगे. तो ये भी बता दीजिए कि गोल्ड खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: गोल्ड बैंक.
1: अद्भुत असामान्य, बिल्कुल सही जवाब. अरे इससे पहले कि देर हो जाए, जल्दी से गोल्ड बैंक जाइए और जी भर के सोना खरीदिए.
3: विजिट द गोल्ड बैंक दिस धनतेरस एंड दिवाली, 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, 0203 500 1111. goldbank.co.uk.
4: इस फेस्टिव सीजन पे मिठाई और फरसान के लिए याद रखिए एक ही नाम, शायोना, जिनकी घर जैसी यूके में बनी ताजी मिठाई और फरसान का जवाब नहीं. सब कुछ फ्रेश एंड ऑल एट अ स्पेशल प्राइस. मठिया एंड चोरा फली 3 for 450 और घुघरे का तो जवाब ही नहीं.
5: अवेलेबल एट ऑल शायोना स्टोर्स. विजिट आवर न्यू हनी पॉट लेन स्टोर फॉर ऑल योर स्नैकिंग नीड्स इंक्लूडिंग फ्रेश हॉट फूड. ऑल्सो सिलेक्टेड लाइंस अवेलेबल एट मॉरिसंस, टेस्कोस एंड सेंसबरीज थ्रू आउट द दिवाली सीजन और ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम शायोना UK.com.
6: Honey, I was in the pet aisle and you'll never guess what.
7: What is that?
6: A gerbil. They were on sale.
7: Why would we want that?
6: They were doing 3 for 2.
8: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses and more. Available online and at your local IKEA. IKEA. A wonderful everyday.
9: Jit haar pul jo. Is tarah khedo ke log sanu pul na sake.
10: Neeru Bajwa, Sunny Singh, Jagdeep Wading, Amarpreet Singh starrer. Thapi, 16 October to tuhade Nerli cinema karavich.
11: Dad, where have you been?
12: I went to supermarket, snack shack chahida si. Big cricket match today on TV and movie afterwards.
11: We had popcorn and crisps, Dad.
12: I'm a desi. I need my Indian snacks. Supermarket with chatwal milia.
11: Uncle Chatwal?
12: Nahi, chatwal de namkeen range. Plain bhujia, aloo bhujia, khatta meetha, neemu masala, navratan mix and moong dal. Oye, main full selection chak le aaya.
3: Chatwal's mazedar spicy Indian snacks. Our award-winning great taste of 2026 winners. A brand by SOP International. Now available at major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets. Enjoy with family and friends.
4: Kavitaon

0: द हिट ऑफ द आवर विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो बॉल चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया। Welcome to your daily dose of food trivia, recipes and food facts on Sunrise Radio. Brought to you by Suhana Foodies. Suhana, maza aa gaya.
1: Did you know curry leaves are completely unrelated to commercial curry powder? Native to South Asia, these fresh, green leaves are tempered in hot oil, releasing a citrusy, nutty aroma that forms the signature base for southern dishes.
0: This daily food feature was brought to you by Suhana Foodies. Try their kappa poha, jaggery powder, turmeric latte mix and spice mixes like butter chicken and paneer makhanwala. In stores nationwide. Suhana, maza aa gaya.
2: The UK's biggest Asian mix continues.
3: Sweetie tera drama. Coming up for you after this.
4: Kavita on Sunrise with Sony TV. What if your favorite contestants got one more chance to win? This season they do. It's Indian Idol. Legends return with Himesh Reshammiya. Starts 17th October only on Sony TV.
0: Time to go on a cruise. Royal Caribbean, Norwegian, Celebrity, Carnival, MSC, Princess Cruise. Call Travel Hub.
5: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833. Or visit travelhubworld.com.
6: Travel Hub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
7: London, get ready. Raga Events presents Bare Mia Chote Mia live in concert. Powered by India Wala Paneer. Experience the legendary Bollywood icon Udit Narayan performing live alongside the dynamic Aditya Narayan. One epic night of legendary hits, electric energy and pure Bollywood magic. Sunday, December 20th, 2026 at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets are selling fast. Grab yours now at Ticketmaster, AXS or visit raga.events.
8: Diaz, we are specialist Asian outfitters and our stylists are ready to dress you and the whole family, whatever the occasion and celebration. Diaz bridal wear, groom's wear, men's wear, party wear collection, suits, lehengas and saris. We also have XL sizes in stock, plus a complete kids wear range. Visit Diaz 213 to 215 Soho Road, Birmingham. Our latest collections are now in store.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
10: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर गोल भेजने की सबसे सही जगह कौन सी है।
11: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ।
10: जी बिल्कुल
12: शबनम इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
11: हाँ मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है गोल्ड बैंक।
10: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है।
11: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ।
10: बिल्कुल आप ऑडियंस पूछ ले सकती है।
13: गोल्ड बैंक।
11: मैं ऑडियंस के साथ हूँ गोल्ड बैंक।
10: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
14: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
15: एंड नाउ द वेदर।
16: आउटसाइड ग्लूमी स्काइज अ प्रसिस्टेंट ड्रिजल एंड अ चिली विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ बट इनसाइड टेंपरेचर्स ऑफ टोस्टी वार्म विद हाई चांस ऑफ प्लश रग्स Soft lighting and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA.
17: IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.
18: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers, fix leaking taps or toilets, using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.
19: ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ
20: ਗੰਜਿਆ ਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੂ
21: ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਥਾਪੀ ਦਾ ਸਟਾਰਿੰਗ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
22: ਵੱਡਾ ਤੇ ਥਾਪੀ ਉਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣ ਤਰੀ ਤੇ ਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
23: ਕਵਿਤਾ ਔਨ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ What if your favorite contestants got one more chance to win? This season they do. It's Indian Idol. Legends return with Himesh Reshammiya. Starts 17th October only on Sony TV. Sunrise
24: Radio. Happy birthday to American fashion designer, philanthropist and businessman, Ralph Lauren. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate together with delicious mithai from Ambala Sweets.
25: Birthday greetings from Ambala Sweets. Imagine winning 6 kilos of Ambala's delicious mithai this Diwali. To celebrate, Ambala is giving 5 lucky customers 12 boxes of our famous mithai each. Simply spend £25 or more online at ambala.co.uk by 20th October for your chance to win. Perfect for sharing after the win. Celebrate Diwali with Ambala. Terms and conditions apply.
26: The Travel Update with Malabar Gold and Diamonds presenting the 10th Birmingham Diwali Mela featuring the legend Kulwinder Villa from 12 noon on Sunday 25th of October on the world famous Soho Road, Birmingham. Visit shopsohoroad.co.uk.
3: The M6 going northbound has delays of 35 to 40 minutes there. That's junction 18 to junction 19. On your M25 going clockwise, junction 15 at the M4 interchange and junction 16. There is an air ambulance response there causing delays of 25 minutes.
26: The Travel Update with Malabar Gold and Diamonds presenting the 10th Birmingham Diwali Mela featuring the legend Kulwinder Villa from 12 noon on Sunday 25th of October on the world famous Soho Road, Birmingham. Visit shopsohoroad.co.uk.

0: And that is your listener's choice.
1: Listener's choice, brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
4: The hit of the hour with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
0: Stand by for your mystery voice. Coming up after this one from the film Alpha, it's Champagne.
5: It's Raj Guy on Sunrise Radio.

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Geo Hotstar.
3: Get ready to guess the film after this.
4: The hit of the hour with Jamin Foods.
5: नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा with नमकीन, mango ball, chicky और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The hit of the hour with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
4: Join to winning song, a banger, hitting Sharvi Yadav and your boy Badish.

या भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूजडे टू संडे।
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: Frontier Ras. If your big wedding day year is 2027, our new bridal and men's groomswear collections have arrived in store. Also, not forgetting the glamorous guests. Party season is here. We have a genuine 30% off on all new stock. Lehengas, ready-made outfits, saris and unstitched suits. Frontier Ras, 90 Great Hampton Street, Birmingham. And our flagship store, 39 South Road, Southall.
3: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry-stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
4: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल भेजने की सबसे सही जगह कौन सी है?
5: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
4: जी बिल्कुल।
6: शबनम, इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
5: हाँ, मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है, गोल्ड बैंक।
4: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, गोल खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
5: सर, मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
4: बिल्कुल, आप ऑडियंस पोल ले सकती है।
7: गोल्ड बैंक।
5: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
4: यहाँ देखिए, 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
8: विजिट द गोल्ड बैंक, 215 द ब्रॉडवे साउथॉल, 0203 500 1111, goldbank.co.uk।
9: दिस विल बी माय वेरी लास्ट सीजन ऑफ कॉफी विद करण, सो जॉइन मी एंड हैव दैट वन लास्ट कप ऑफ कॉफी विद मी।
0: जॉइन करण जौहर एंड हिज एस्टीम्ड गेस्ट्स फॉर द फाइनल सीजन ऑफ कॉफी विद करण, स्ट्रीमिंग नाउ एक्सक्लूसिवली ऑन जियो हॉटस्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब नाउ।
10: Drive on sunrise with Pepe's Piri Piri. Pepe's, with over 260 stores, you're sure to find one near you. Fresh flame-grilled chicken with 6 tasty flavors. It's Pepe-licious. On AM in London and nationwide on DAB, this is Sunrise News.
11: From the Sky News Centre at 7, President Volodymyr Zelensky says it's painful when Donald Trump chooses a different side in Ukraine's war with Russia. He's met the Prime Minister at Downing Street just days after the US announced a diesel deal with Moscow. Meanwhile, Kyiv says its ability to counter Russian drones is being disrupted by SpaceX's slowdown of some Starlink services. Mr. Zelensky says they've been experiencing issues.
12: It's a pity that we had also some difficulties when I want to discuss with Andy about Starlink and about intelligence. I mean, a lot of different surprises on which you can't count when you have real partnership.
11: Russell Brand's been described as a ruthless and manipulative predator as his rape trial got underway. The actor and comedian, who denies 7 offences, is accused of assaulting women in a hotel room, a bar toilet and his own home. The King's is expected to send private well wishes to the Pope following his cancer diagnosis. His Majesty, who's also undergoing treatment for the disease, visited Pope Leo at the Vatican last year. Irish police have searched a number of properties as part of the investigation into a suspected arson attack that claimed the lives of four people. Philip and Kim English and children Callum and Jaden died in the fire in Waterford yesterday. Two other children remain in hospital in a critical condition. Here's Irish Prime Minister Micheál Martin.
13: The situation is extremely shocking in terms of the level of violence. We, as a government, will ensure that the full resources are behind on Garda Síochána. All the resources in terms of counselling and supports are in the area to help children, classmates and so forth.
11: This winter will be difficult and people will struggle, according to the new head of the energy regulator. Tim Jarvis says he's waiting to see what's announced in the budget later this month. And Liverpool have a 4-0 lead in their Champions League game against LASK in Austria. And later, Manchester City will take on the holders PSG. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.
14: Welcome to Late and Live with me, Nads, on the UK's biggest Asia mix, kicking off with Nach Merirani, with Guru Randhawa, Nikita Gandhi and Haji from Thank You For Coming. Oh, yeah.

0: Pepe's Piri Piri presents The Showstoppers, featuring the top three winners of Indian Idol Season 16. The very beautiful Jyotirmay Nayak, soulful Tanishq Shukla, and the very entertaining Manraj Veer. After winning your hearts on TV, they are now coming to UK to perform live for the very first time this November. You can watch them perform in Birmingham on Friday 20th November at the Warehouse in the Aston Villa Stadium, on Saturday 21st November at the Live Centre Events Bradford, and on Sunday 22nd November at British Airways Arc, situated in Olympia London in West London. Tickets available via Ticketmaster and Videorama. Grab your tickets now. This show is powered by Dairy Valley and produced by Grace Entertainment and VM Law Solicitors. Radio Partner Sunrise Radio.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन भर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: This Halloween at Lidl, we won't be beaten on price on our pumpkins. We've got munchkin pumpkins, medium pumpkins, large pumpkins,
4: and even monster pumpkins.
3: Get yours in store now. Lidl, more to value.
5: Price match in most major supermarkets till 31st of the 10th. See lidl.co.uk/spendless. Selected stores while stocks last, exclusions apply.
6: England mein hum pani ka istemal utni tezi se kar rahe hain jitni tezi se prakriti ise dobara bhar nahi sakti. Agar kuch nahi badla to 2055 tak hame har दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
7: गोल्ड लेना है वसीम ज्वेलर्स आएं, पुराना गोल्ड बेचना है वसीम ज्वेलर्स आएं। At Wasim Jewelers, you can shop beautiful gold jewelry or sell your gold at competitive rates. Visit us at 130 or 90 the Broadway South Hall today. Wasim Jewelers, सबसे सोना सादा सोना।

0: Every week in the UK, 12 young people aged 35 and under die suddenly from an undiagnosed heart defect. 80% of these cases have no symptoms, which is why cardiac screening is so vital. CRY, Cardiac Risk in the Young, screens around 30,000 young people every year, and CRY wants every young person in the UK to have access to screening. But we need your support. To find out more, go to c-r-y.org.uk/sunriseradio.
1: Herald, a new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald Winter Catalogue today. Call 0208-507-7900 or download their Winter Catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and delivery businesses. Herald Packaging, available at food services, cash and carries and with disposable suppliers to trade, visit heraldpackaging.com. आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉ जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली, ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
1: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, we've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
3: Shari di gal kama tenu kaal hai, tenu vya waaste munda nahi milna.
4: Ganja ja bakwas na kar kan te maru.
5: Ye dialogue hai on wali Punjabi film Thappi da, starring Neeru Bajwa, Sunny Singh, Jagdeep Wadding, Amarpreet Singh. 16 अक्टूबर तो तुहाडी नेहली सिनेमा घर विच
6: बड़ा ते थापी ओही मारदे ने जिन्ना ने जान तरी ते तरी हुंदी आ।
7: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
8: Time now is 9:42. Good evening.